की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या पति रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सबको जय जय सीताराम।

सर इतना कुछ हो गया आपने बताया ही नहीं। कल से आप अपनी कंपनी संभाल रहे हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ और ये कंपनी भी आप ही की वजह से है, इसलिए आप कल से अपनी कंपनी संभाल रहे हैं।

0: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान् नित्योर्मोक्ष्यमापतात्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे वाह, ये लो बेटा, बाबा जी का प्रसाद खाओ। आज ग्रेजुएट हो गए हो तुम।
1: आप तो आए नहीं मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में, ना ही कभी माँ को जीते जी टाइम दिया। आपके लिए तो बस आपकी नौकरी और आपके शिव।
2: तिवारी जी नहीं बेटा, पापा है तुम्हारे।
0: अरे अरे, वो हेलमेट टूटा हुआ है। आप प्लीज प्रसाद।

0: मुझे कभी पापा कहकर बुलाता ही नहीं है यार।
1: अरे तो अपनी नौकरी पे कम और बेटे पे ज्यादा ध्यान दे।
0: इसमें नौकरी कहाँ से आ गई बीच में?

0: कोमा में चला गया आपका बेटा, उसका हेलमेट टूटा हुआ था।
1: मेरे सुमित की जिंदगी लौटा दो।
2: हो जाएगा,

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरा रे जिसकी रखवा लिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

लता किसी तारीफ के नहीं बल्कि परस्तिश के काबिल हैं। उनकी आवाज सुनने के बाद कुछ ऐसा आलमतारी हो जाता है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यूं समझिए जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहां पहुंचकर इबादत के लिए खुद ब खुद सर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं।

0: मजा ले लो दुनिया का मजा ले लो दुनिया तुम्हारी है ये दुनिया तुम्हारी है
1: इस क्लासिक गोल्डन गोल्डीज फॉर यू एंड योर सुंदर सपना टुनाइट रेडियो जागृति 107 एफएम लेट्स go to Naya Daur of 1957. I've got one from Naya Andaz of 1956 and a CID also of 1956. In fact, I've got two selections from CID. Keep up for your listening pleasure.

के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे। पंजरों का

Miserable थी उनकी लाइफ, drunkard husband, fighter wife, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं।

राधा देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी

लोग कहते हैं तू सबकी सुनती है, तो क्या मैं तेरा नहीं हूं मां? देख तेरे इस बच्चे की आंखों में अब आंसू भी सूखने लगे हैं, बस एक बार मुझे अपनी गोद में छुपा ले मां।

कल्याण धायनी शिव हो, सब पुरग अर्थ को सिद्धि करने वाले माँ, शरण घट वत्सला और तीन लोक वाले एवं गौरी तुम, तुम्हें नमस्कार करता हो। As we think of the Devi, my dear devotees, we continue to remember her grace.